त्रिदक्षिणाभिमुख सन्मुख सर्ववन्द्य मायांधकार परिहार विनूत्न विन्ध्य भक्ताश्च ते चरण पद्म दिदृक्ष मोहि कोटप्पकोंड जगदीश्वर सुप्रभातम्। सर्वेश भूमि पवनाग्नि जलांतरिक्ष लिंग स्वरूप हृदयांबुज

ज्योतिस्वरूप निरवध्य विभूति हृद्य गंगा सुधाकर सुशेखर नागहार कोटप्पदेव चरणौ शरणं प्रपद्ये श्री ब्रह्मकूट महिमान्वित विष्णुकूट श्री रुद्रकूट परिसर्पण रम्य शीलौ भक्त प्रयोजन परौ भवतापहारौ कोटप्पदेव चरणौ शरणं प्रपद्ये।

त्रिकूट गिरिशीर्ष तले सुदत्तौ कोटप्पदेव चरणौ शरणं प्रपद्ये श्री निर्विकल्पक समाधि सुसक्त योगी चित्त रविंद सुसमुज्ज्वल सौम्य सु

ज्ञानामृत प्रिय पिपास मुनीन्द्र बृंद संसेवनोत्सव समुत्सुक चित्र लीलौ नित्यावतृप्त्यमृत रूप धरौ प्रशान्तौ कोटप्पदेव चरणौ शरणं प्रपद्ये नित्यात्मभाव निरताखिल दास वर्ग संप्रार्थनाभिमत दान गुणैक शीलौ नास्तिक्य रूप विषवृक्ष विनाशक उद्वौ कोटप्पदेव चरणौ शरणं प्रपद्ये दिव्यौ मृकण्डु मुनिपुत्र सुदर्शितौ तौ श्रीशौनकादि मुनिवृन्द सदा सुसेव्यौ सर्वोत्तमौ सकल दैव